पहला सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोणे खट तुरसी मुख बोलना मारण नाद किए छती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। जिंदगी दा लक्ष अगर असी लभीए आम दुनियावी मनुख दा आम संसारिक इंसान दा लक्ष की है, मनुख क्यों जी रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनियावी मनुख दे लक्ष्य दा इस पावन पवित्र वाक विच बड़ा सुंदर चित्रण कीता है, तस्वीर कशी कीती है। आप फरमान कर देने दुनियावी मनुख संसारिक मनुख आम इंसान आद आदमी खाण ले जी रहा है, पीण ले जी रहा है, पहनण ले जी रहा है, मनोरंजन ले जी रहा है, परिवार ले जी रहा है, परिवारिक खुशियां ले जी रहा है और फिर जी रहा है सोण ले नींद। जीवन

0: ਦਾ ਆਖਿਰ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਏ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੋਚੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਲਈ ਜੀਵਾਂ? ਜੀਵਣਾ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ 12-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਬਲਾਏ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਮਰੂ ਥਲ ਦਾ ਪੇਂਡਾ, ਕਿਧਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਸੁਮੇਰ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ, ਕਿਧਰੇ ਤਨਹਾ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲਾਏ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕ, ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਚਾਰ ਪੱਖ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਖਾਣਾ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਪਿਆ ਯਾਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਿੰਤਨ ਇਸੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਥੱਕੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵਕਤੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਪਰਚੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਇੰਝ ਸਮਝੇ ਜਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੰਡਾਂਦਾ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਵਾਕਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੋ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਵਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਸਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, सुंदर घोड़ी उस दे उत्ते मैं चांदी दी काठी पावा लगाम दे सोना जुड़िया होवे और ऐसी सुंदर घोड़ी असवारी ली होर तरह दे मनोरंजन दे साधन तरह तरह दे मैं थोड़े लई मुहैया करा फिर थोड़ा एक परिवार है परिवारिक खुशियां माणो फिर सुख दी नींद सोवा ए उसनु आख्या जा रहा है जो हर वक्त सुख दी नींद देच है हर वक्त आनंदी से जाते है हर वक्त खेड़े ते खुशियां दे माहौल दे जो जी रहा है और जिसनु कहिंदे ने ब्रह्मानंद जो हर वक्त ब्रह्मानंद दे माहौल दे जी रहा है ए सारा सलाह मशवरा उसनु दिता जा रहा है। अक्सर ऐसा होया है कि जद किसे मनुख दी शिखर ते पहुंची ए सुरत तो शिखर ते पहुंच के जो कुछ ओ बोले है ओ दुनियादार दे कन्ना तक नहीं पहुंचे है। थल्ले खड़े च खड़े हुए मनुख ने जो कुछ आख्या है ओनु अनसुणा कीता है उसने जो शिखर ते खड़ा है जो बुलंदियां ते खड़ा है तो तालमेल नहीं बैठे। बहुत सारे अवतारी पुरुषां दा संसार दे च आगमन अजाई चला गया अकारत चला गया वो इतनी शिखर तो बोले इतनी बुलंदी तो बोले जो थल्ले खड़ दे च खड़ा सी उसने सुनिया ही नहीं उदे सिर दे उपरों लंघिया उसका तालमेल ही ना बैठे उन्हें शायद एवं कोई गूंजदी हुई आवाज महसूस कर ली खास नहीं है और जो तो खड़ दे च बैठ के खड़ भरे बोल बोलदा रहे उदे बोलां दे च भी खड़ सी जिथे उसका तन खड़ दे च कलार सी उसकी बोलनी भी खड़ नुमा सी बोल भी बड़े नीवे बोल भी बिल्कुल ही खड़ और उन्हां बोलां नू कोई मन लवे तो इंज है जिवें जिंदगी नू किसे खड़ दे च गिराना होवे किसे गड्ढे दे सुटना होवे। तो इस तरह दे बोलां नू परम पुरखां ने अनसुना कर दिता वांझी रह गई ए दुनिया उस महान बोला तो और इस तरह जगत दा पूर्ण तौर ते कल्याण आज तक नहीं हो सकया नहीं ते कितने महापुरुष आए कितने अवतार आए लक्ष्य ते उन्हां दा एही सी कल्याण करना है खड़ दे च जिंदगी बतीत करन वाला मनुख खड़ नाली मोह पा बैठा सी गहरे गड्ढिया दे च ही जीवन दा आदि हो गया सी उन्हें शिखरां नू छूना ही और शिखरां तक पहुंचना ही ए सुपना ही मन लिया ए हकीकत नहीं हो सकता ए वास्तविक नहीं हो सकता इस वास्ते सोचना ही बंद कर दिता। माता तृप्ता जी ने जद आख्या है लाल जी कितने तरह तरह दे पदार्थ ने मैं बनावा तुसी खाओ मैनू खुशी होवे तुसी आनंद माणो तो सतगुरु कहंदे ने मां जी फिर थानू आनंद ही माणना चाहिदा ऐसा केड़ा पदार्थ है कि मैं नहीं छकदा। तृप्ता जी कहण लगिया मैं ते मरदाने तो सुनिया कई कई दिन तक बार भोजन नसीब नहीं होंदा कई कई दिन बिना खाणिया दे ही लंघ जांदे ने और खाना पहल है खाना अवल है इतनी गल स्पष्ट है कि चार दिन दा जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टूट जाएगा परिवारिक खुशियां नाल संबंध टूट जाएगा की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है इसकी चाहत भी मिट जाएगी हर तरह की चाहत नू भुख खत्म कर देंदी है भुख इको ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे मेरी पूर्ति होवे। तो ए सब तो प्रथम है भुखे मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है परिवार खुशियां बेमैनी ने तरह तरह दे वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है और ए गल स्पष्ट है कि कि बहुत सारी दुनिया खाण लई जी रही है, सारे दा सारा पशु उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते पैनना है ही नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते परिवारक खुशियां है ही नहीं, सारे पशु खाण लई जी रहे ने और की है। पशु जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, पंछियां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है। अगर उन्हां दी कोई सोचनी है ते कम करदी है तो सिर्फ खाण लई कम करदी है, और सारी भज दौड़ खाने दी तलाश है, रिजक दी तलाश है, खुराक दी तलाश है, और कुछ नहीं। और गजब दी गल है कि पशु खांदियां खांदियां रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनण दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख दी जिंदगी थोड़ी वंडी जांदी है, बिखर जांदी है। पशु कोल सिवाए खाने तो होर कुछ नहीं, तो चूंके खाना ही लक्ष्य है ते खाण तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अदक खा जांदे ने, ज्यादा खा जांदे ने, बहुत खा जांदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझांदे ने, मां जी मैं तरह तरह दे पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहंदे ने सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। मां जो मैं परमात्मा दा नाम मन लिया और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम विच जम गया है, बैठ गया है, ए मानो मैं सारी मिठास दा आनंद माण लिया। ऐसा केड़ा मिठा पदार्थ है जिसका रस मैं नहीं माणिया? हकीकत है, एक सच्चाई है, जदों भी कोई मनुख इस मिठास दा आनंद जिंदगी च पहली दफा माणदा है सब कुछ भिखा हो जाता है। बिखे मन फीका त्यागरी सखिए, नाम महा रस पियो। इस वास्ते परमात्मा दे नाम नू रस नहीं आख्या, महारस, सारी मिठास जिस दे च है, और ऐसी मिठास जिसनू किसी भी बैरूनी मिठास नाल तशबीह दे के समझाया भी नहीं जा सकता, प्रगट भी नहीं किया जा सकता। महाराज कहने जो मैं मन लिया है, मन दिया ही सारी मिठास अंदर प्रवेश कर गई है। कदी बगौर मुताला कर रही है, कथा दा सुनना, कीर्तन दा सुनना, धर्म मंदरां दे जाना, ध्यान साधना करनी, सारा धर्म कर्म कांड अपनाना मैं इस वास्ते ही है कि किसी तरीके नाल मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवे, होर ते कोई मतलब ही नहीं है। और जिसदा मन जितना मनदा जाएगा अध्यात्मक तल ते उतना ही उन्नत होंदा जाएगा, उतना ही महान होंदा जाएगा, उतना ही अग्रसर होंदा जाएगा। तो साहिब कहंदे ने सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। सलूणा नमकीन ए भी रसां दे चां एक महान रस है, गुरु घर दे नियम संग इस नूं सर्व रस कहंदे ने। दाल दे च पाईए होर रस, सब्जियां दे च पाईए होर रस, वख वख सब्जियां दे जिस ढंग नाल पांदे जा रहे हैं लूण अपना रस बनाई जांदा है, और इसे ही लूण नूं इक पासे कर देवो, हर सब्जी बेस्वाद, हर दाल बेस्वाद, हर पकवान बेस्वाद। ठीक ही नाम दिता है सर्व रस, बहुत सारे रसां दी खाण है ए नमक। महाराज कहते जो उसकी उस्तत में सुनना और सुन सुन के जो आनंदित होना और जेड़ा रस अंदर पैंदा है, मनो जगत दे जितने सलोने पदार्थ ने मैं सारे खा ले, मैं सारे चक ले, सारे पदार्थां दा आनंद माण लिया। सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਖੱਟਾ ਹੈ ਤੁਰਸ਼ੀਨ, ਖੱਟ ਮਿੱਠੜਾ ਹੈ, ਕਰਕਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੱਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ। ਖੱਟੇ ਤੁਰਸ਼ੀਮ, ਖੱਟ ਮਿੱਠੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਖੱਟ ਮਿੱਠੜੇ ਰਸ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਤੁਰਸ਼ੀਮ ਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਜਦ ਰਸਨਾ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਮੋਲ ਦੀਏ, ਜਦ ਰਸਨਾ ਉਸਦਾ ਜਪ ਜਪ ਦੀਏ। ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਣਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ, ਬੋਲਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ। ਤੂੰ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਚ, ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰਥਿਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਯੁਗ ਮੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸੁਣਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਸਫੇ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਨੇ, ਰਾਗ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਸੁਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਾਰਥਿਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਕਲ ਯੁਗ ਮੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਢਾਲ ਕੇ ਗਾਇਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਏਕ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਮੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਏ ਨੇ। ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਣਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਆਇਆ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ 9 ਮੰਨਦੇ ਨੇ, जिन्हू नौ रस भी कह देंदे ने मन दे वख वख इस ढंग दियां जो है गिनतियां ने साहिब कहिंदे 36 प्रकार दा जो खाना है मनो में छक लिया मनो में रस मान लिया जिहड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है अंदर जो है पैदा हो गई है इस वास्ते बाबा होर खाना खुशी खुआरे जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे और खून तां चलदा रह सकदा है अगर मुंह विच भोजन चलदा रहे खुराक चलदी रहे। खुराक खून है खून जिंदगी है और खून चलदे ने तो मन चलदा है विचार चलदे ने तो मुख गलते आ गई भोजन ते। तो साहब इसने इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून विच विकार पैदा करता है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर विच रोग पैदा करता है। बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकता है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं मन दे अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे अगर कोई अपने मन नूं पढ़न वाला होवे ते उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है क्योंकि खून दी गर्जिश ते खाण नाल है विचारां दा दौर ते खाण नाल है मन दे च विकार आ गए ने तन दे च पीड़ा आ गई है ये ते खाना दोषी है और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जांदा विचार दोषी हो जांदे ने शरीर रोगी हो जांदा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी ए मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है सावधान नहीं है तो स्पष्ट है वो अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारों प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है वनस्पति दे च है पशु पक्षियां दे च है आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी रुखां तले रहिंदा सी और प्रकृति ही जो उसनू खाण नू देवे ओही खांदा सी इसदा स्वयं दा कोई चुनाव नहीं सी क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फुल दे दिते फल दे दिते ओ खा लिया पर जद फुल ना मिले फल ना मिले तो फिर पशुआं दा शिकार। इस ते जीवन बतीत होंदा रहा जिंदगी इस तरह लंघदी गई आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा दे च बैठन दी जाच आई सभा नू समझण दी जाच आई सभा दे च अपने आप नू पेश करन दा ढंग इस नू आया और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगदे उस सभा नू भी नहीं चंगे लगदे। सभा मैनू कैसी चंगी लगदी है और सभा नू मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा इस सोचनी दा जदो जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नू ढा लिया तो उस नू आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ए भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसे नू दुख पहुंचे चोट पहुंचे तो मेरे आहार दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे मेरी खुराक दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे। वैसे ते बनस्पति दे च भी जी दाणियां दे च भी जी और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकदा नहीं ते पानी दा त्याग करना पेगा बनस्पति दा भी त्याग करना पेगा दाणियां दा भी त्याग करना पेगा क्योंकि जे ते दाणे अन्न के जिया बाज ना कोए, बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नु चोट घट पहुंचे। पशुओं का कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होंदी है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नु भी मनुष्य जैसा समझना चाहिदा है, मनुख जैसा समझना चाहिदा है। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं, सिर्फ शरीरक ही पीड़ा है, तो ओ वनस्पति जैसे ने, ओ दाणिया जैसे ने, क्योंकि दाणिया नु भी जद बुनदे आ तड़पदे ओ भी ने, दाणिया नु भी जद बुनदे आ उछलदे ने, तड़पदे ने, आवाज भी करदे ने, तिड़ तिड़ करदे ने, इह इना दे चीखण दी आवाज है। तड़पदे हुए किसी पशु नु वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे तो उसनु तड़पदे हुए दाणिया नु वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहिए, दर्द महसूस होना चाहिए। फिर भी खुराक खान लगया उदी ए सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नु घट ही चोट पहुंचे, ताकि ऐसा आहार मेनू चोट ना पहुंचावे। जिस आहार ने दूजिया नु चोट पहुंचाई है, ए हार इसनु भी चोट पहुंचाएगा, एदे तन नु रोगी करेगा, एदे मन नु पीड़ित करेगा। करीबन करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजिया नु चोट पहुंचा के हासिल कीती जा रही है, तो चोट पहुंचा के हासिल कीती गई खुराक खुराक भी चोट पहुंचाएगी, खुराक भी जरब करेगी। इस वास्ते गुरु नानक दा ए फैसला, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार, हे बाबा हे मेरे मित्र हे सियाने, सुचेत रह तेरे शरीरक रोगां लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार, तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकता, जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता, और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं उनु सभ्य नहीं कहा जा सकता, असभ्य मनुख है। अजे उसनु सवाद बैठन दी जांच नहीं आई, अजे उस दे अंदर पूर्ण तौर ते मनुखता प्रगट नहीं हुई, तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश अपना संदेश खाने तो आरंभ करदे ने, फिर दूसरा आप पहनने दा उपदेश देंदे ने।
1: रता पहनण मनुरता सुपे दी सतदान, नीली सिहाही कदा करनी पहरण पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम, बाबा होर पैनन खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार। खान पीण तो बाद पहनण दी मनुख सोचदा है, और ये सिर्फ मनुख ही सोचदा है, या इंज कह लो पहनण तो ही मनुखता आरंभ होंदी है, पहनण बारे पशुआं ने नहीं सोचिया, पंछियां ने नहीं सोचिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने, विस्माद नांगे फिरे जंत, इन्ना नंगे पशुआं नू देख के मैं ते विस्मादमई हो जांदा, विस्मय हो जांदा, इना दे अंदर पहनण दा ख्याल नहीं पैदा होया, ये इस तरह दे नाल नगनता दी प्रदर्शनी कर रहे ने। एक मासूम बच्चा नवजायद बच्चा उस दे अंदर भी अजे पहनण दा भाव नहीं पैदा होया, ये गल वखरी कि चीथड़ियां विच कपड़ियां विच मां बाप उस नूं लपेट के रखदे ने, पर पहनण दा भाव अजे उस दे अंदर नहीं पैदा होया। इस वास्ते कह देंदे ने ए मासूम बच्चा अजे असभ्य है। सभ्यता ते बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है, तो अजे बौद्धक विकास नहीं होया, ए बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने। मनुखता नहीं आरंभ हो सकी, ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਏ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਸੋਚਦੇ ਤੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਔਰ ਨਗਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਦ ਨਗਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਢਕਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਜ਼ਾ ਢਕਣੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਕਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵੇਗ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਹਿਣ। ਨਗਨਤਾ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਨਗਨਤਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਗਨ ਹੈ, ਨਗਨ ਹੈ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਇਹ ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਟੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ ਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਭੜਕੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਗਨਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਕਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਨਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਤਨ ਵਿਚ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਬ ਦੇਹ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਉਥੇ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਆਵਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਢਕਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ, तो ए ते इस तरह है जिमें किसी औषधि तो बीमारी लभण की कोशिश की जाए, किसी दवाई तो रोग लभण की कोशिश की जाए, पहनना सी अपने आप नूं ढकण लई, लेकिन अजोके युग दे च पहनना हो गया अपने आप नूं प्रगट करन लई। बहुते मनुख अज कपड़िया दे राही अपने आप नूं प्रगट करदे ने, बाकी तो उन्हां कोल कुछ है नहीं, पहनना ही पहनना है। पहरावा दसदा है, कपड़ा ढकण लई सी। इस्लाम ने ऐसा पर्दा दे दिता, ऐसा ढकया, मनुख गायब हो गया, पर्दा ही पर्दा रह गया, कपड़ा ही कपड़ा रह गया, मनुख ना दिसया। ईसाइयत ने इतनी नग्नता दे दिती, इतनी नग्नता दे दिती, तो नग्नता ही नग्नता रह गई, कपड़ा ओले हो गया। दरमियाना दरमियाना ढंग, दरमियानी अवस्था धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चुनी, वो कपड़ा ही नहीं कि मनुख नु बिल्कुल ढक देवे, कपड़ा ही दिखाई देवे, मनुख ना दिखाई देवे, पर वो नग्नता भी नहीं कि नग्नता दिखाई देवे, कपड़ा होवे ही ना। देखते हैं असि किधरे मनुख नु देखिए तो कपड़े दे दर्शन होंदे, मनुख दे नहीं। चादर है, बुरका है, और अनेक तरह के पर्दे ने, तो कपड़ा दिखाई देता है, मनुख नहीं। पर है किधरे ऐसी नग्नता, उस नग्नता दे भड़काऊ वासनावां ही दिखाई देंदियां ने, भड़किया होया मन ही दिखाई देंदा है, भड़किया होया तन ही दिखाई देंदा है, लिबास नहीं, कपड़े नहीं। एक बड़ी सुंदर गाथा है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी सुपत्नी साड़ी जगत माता गंगा उन्होंने कहा, जे थानू संतान चाहिए तो इसका आशीर्वाद तुसी बाबे बुढ़े तो प्राप्त करो। सिख नूं मान देंदे ने गुरदेव, असीस लो, आशीर्वाद लो। बाबा बुढ़ा साहब नूं मिलन लई तैयार होईआं माता गंगा जी, तन सजाया बस्त्रियां नाल, गहणियां नाल, फिर अपने रथ नूं सजाया, फिर सजियां धजियां नाल सहेलियां लईआं, सखियां लईआं, नौकराणियां दासियां लईआं, चल पए बाबा बुढ़ा जी दे दर्शन करन लई। अक्सर ऐसा हुंदा है कि बहुत इस तरह दा शिंगार मनुख कर लवे, लिबास पहन लवे, तो अंदर भाव पैदा हो जांदा है जैसे मैं दर्शन करन लई नहीं जा रहा, दर्शन देन लई जा रहा। लिबास ए भाव पैदा कर सकदा है, लिबास ए ख्याल पैदा कर सकदा है मैं दर्शन देने ने। और जिन्हां जिन्हां दे अंदर ए बुख जितनी ज्यादा होवेगी उतना भड़काऊ लिबास पैदा होता जाएगा, उतना ही भड़कीले लिबास का जन्म होगा कि मैं दर्शन देने ने, मैंने दिखाना है, मैं जगत नु दसना है। पावे माता जी दी भावना नहीं सी, पर संसारिक रीति दे मुताबिक आपने बड़े सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर गहणियां नाल अपना तन सजाया, रथ सजाया है, सजियां धजियां दासियां ते सहेलियां नाल थाल दे 36 प्रकार दा पकवान लेके आप चलिया ने। दूरों रथ जद बाबा जी ने वेख्या, धूल उड़दी हुई, पूछ लिया कामे तो सेवक तो, ए कौन आ रहे ने, तो सेवक ने दस दिता गुरु के महल जाप देने। रसना तो स्वभाविक निकलिया, एक गुरु के महलानों की भाजड़ पै गई है। ए बोल माता गंगा जी देवी कन्नी पे वापस हो गई। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शिकायत की थी, जिन्हां नूं आप मान देंदे हो, प्रतिष्ठा देंदे हो, वो इस तरह साडा अपमान कर देने। और बाबा जी दी रसना तो निकलिया, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
0: ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਇਹ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਐਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੋ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਗੰਡਾ ਥਾਲ ਦੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਰਥ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਦ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ 20 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕਦਮ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਥਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਏ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਗੰਡਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਂ ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ, ਆਖੇ ਉਹ ਲਾਲ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇੰਜ ਬੰਨੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਵਾਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਨੀ, ਸੂਰ ਵੀਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਸ਼ਿਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਇਕ ਐਸੀ ਪਨਹਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਏ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨਾਲ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਏ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਸੀਤਲ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ
1: शिवरात्रि वाले दिन गंगा तट ते की देखदे ने कि वक्त दे बादशाह दी बेगम सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रियां नू देखण लई आई है कि इत्थे आके की करदे ने, किस तरह दे धार्मिक रस्मो रिवाज नू ए प्रचलन करदे ने, ए अपनांदे ने, ए देख रही सी। जिथे ओ धार्मिक रस्मो रिवाज लोकी निभा रहे ने, कर रहे ने, देख रही है, उथे कबीर दे चेले सिकंदर लोधी दी बेगम नू देखदे ने। और मैज इस वास्ते देखदे ने कि इतने कीमती कपड़े और जर्री दा कम है, मोती जड़त ने, किधरे किधरे नीलम भी चलम चमकदे पैने वस्त्रां दे चों, कपड़ियां दे चों। एकदम ख्याल आया उस पनहारी दा जो सारा दिन डेरे दे प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल, गंगा तो भर के ले जांदी है। सारा दिन जिसकी रसना ते सतनाम दी धुनी चलदी है, कबीर पंथियां नू सतनामी कहंदे ने। पर उस दे बस्तर लीरां लीरां ने, उस दे कपड़े ते बिल्कुल फटे हुए ने, मन दे ते एक शक दा बोझ पै गया, ते शक ही सब तो वड्डी मैल है, संसे जियो मलीन है, कित संजम होता जाए, मैला हिरदा कौन, जो परमात्मा दे प्रति शक नाल भरे होया है, निर्मल हिरदा कौन, जो परमात्मा दे प्रति विश्वास नाल भरे होया है। जितना किसदा विश्वास वद्दा जा रहा है, उतनी निर्मलता वद्दी जा रही है, और जितना किसे दा संदेह वद्दा जा रहा है, मैल वद्दी जा रही है, और संदेह ही संदेह रह जाए, विश्वास रहे ही ना, ऐसा मनुख दुष्ट हो जाता है, ऐसा ही मनुख जालम हो जाता है, ऐसा ही मनुख चोर हो जाता है, ऐसा ही मनुख दुराचारी हो जाता है, ऐसा मनुख महान जालम हो जाता है, क्योंकि परमात्मा दे प्रति संदेह ही संदेह है, और ऐसा मनुख पुनीत हो जाता है, भगवंत दा रूप हो जाता है, भरोसा ही भरोसा है, संदेह तो है ही नहीं, केवल भरोसा है। ऐसा मनुख अठे पैर समाधि लीन आउंदा है, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। ऐसा मनुख जो भरोसे ते भावना नाल भरिया होया है, अठे पैर समाधमई आउंदा है, समाधि लीन आउंदा है, अठे पैर प्रभु नाल जुड़िया आउंदा है, निर्मलता दी खाण आउंदा है। ओ निर्मलता दी मूर्ति कबीर दे चेले कबीर दे अगों फरियाद करदे ने, साडे अंदर संदेह पैदा हो गया, की करिए, इस पनहारी नु वेख के और सिकंदर लोधी दी बेगम नु वेख के, इन्ने कीमती कपड़े, इतना कीमती लिबास, पता नहीं उसकी जबान चो कदी परमात्मा दा नाम निकलिया भी है कि नहीं। तो कबीर दे बड़े दो कीमती श्लोक ने इस संबंधित, कबीर दे श्लोकां दी बाणी है। आप कहंदे ने कबीर हैंगे बाहन सघन घन, छत्रपति की नार तासो पटंतर ना पुजे, हर जन की पनेहार। जो हरी जन दी पनहारी है, सारा दिन हरी दे जना नु पानी पिलांदी है, सेवा करदी है, इस दे कपड़े इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे कपड़े इस कपड़िया दे सामने तुच्छ ने। तासो पटंतर ना पुजे, हर जन की पनहार। तर्क खड़ी हो गई, भगत जी वो कपड़े मखमली ने, नीलम जड़त ने, जर्री दा कम होया उना ते, ए कपड़े खद्दड़ दे ने, लीरां लीरां ने, टाकियां ने, थां थां तो पाटे होए ने, सिले होए ने, इते चीथड़े ने, इना नू आप कहंदे हो इतने महान ने, उस बादशाह दी बेगम दे जिहड़े बस्तर ने बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल मामूली। तो कबीर इसका बड़ा सुंदर जो है जवाब दें दे रहे हैं। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, मैं हरी दी चेरी नू मान क्यों दे दिता। मैं इन्हां चीथड़ियां दी इतनी उपमा क्यों कर दित्ती, मैं इतने सादे लिबास दी इतनी महिमा गायन क्यों कर दित्ती, और इतना कीमती लिबास जर्री नीलम दा कम जिस दे च, मैं उसनु भंडिया क्यों, मैं उस दी निंदा क्यों की थी। दूजियां दे तर्क अजे जबान ते नहीं आए, लेकिन फिर भी कबीर जवाब दे रहे ने, समझा रहे ने, कबीर निरपनारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे विखे को ऐसे मरे हरी नाम। इदे सादे कपड़ियां दे हरी दा नाम है, उदे भड़कीले लिबास दे प्रदर्शनी है, वाशना दी नुमाइश है। उदे कपड़िया नू देख के दूजियां दियां वाशनावां भटक दियां ने, भड़क दियां ने, प्रगट होंदियां ने। इदे सादे लिबास नू वेख के लोगां दी जबान ते सतनाम, सतनाम दा जप चल रहा है। जिन्हां कपड़िया नू देख के भगवान चेते आवे, मैं उसकी उपमा करा, या जिन्हां कपड़िया नू देख के शैतान दा जो है चेता चले, मैं उदी महिमा गायन करा। वाकई ऐसा है लिबास जिन्हू वेखदे आई शैतानियत प्रगट होंदी है, शैतान दे दर्शन होंदे ने, और है ऐसा लिबास जिन्हू वेखदे आई भगवान दे दर्शन होंदे ने, प्रभु दे दर्शन होंदे ने। खाण पीण दी सावधानी तो बाद जो मनुख अपने वस्त्रां दे प्रति सावधान नहीं, धर्म दी चरम सीमा नू छू नहीं सकेगा, बुलंदियां नू छू नहीं सकेगा। या इंज कह लो, जद भी किसे दे पैर बुलंदियां दी तरफ रागब होंदे ने, उदे पहरावे दी सादगी आनी आरंभ हो जांदी है, उस दे पहरावे दी कोमलता आनी जो है शुरू हो जांदी है। मनुख दी खाण पीण दी कमजोरी तो बाद ए दूसरी कमजोरी है, खाना पीना जबान दे रस करके बेमर्यादा चला जांदा है, पहनना वाशना करके और अहंकार करके अपने आप नू प्रगट करना है। और जैसे कोई कपड़िया दे राही अपने आप नू प्रगट करता है, उसी तरीके नाल दूसरियां दियां वाशनावां जो है प्रगट आउंदियां ने, और ए पहनना धर्म दी दुनिया दे च जुर्म हो जांदा है। जगत दा तमाम फकीरी समाज, साधु समाज, संत समाज जिस सादे कपड़िया दे च लिपटिया होया है, तो इस दे पिछे कोई फोका कर्म कांड नहीं, इस दे पिछे एक बहुत गहरी सोचनी है, एक लंबी विचारधारा है कि मैं ऐसा पहना कि मैं छुप जावा, और मैं ऐसा पहना कि मैं प्रदर्शित ना होवा, मैं ऐसा पहना कि दूसरे दियां वाशनावां भी प्रदर्शित ना होन। अगर किसी दे कपड़िया दे राही किसी दी वाशना प्रगट हो रही है, तो उदा पहनना बिल्कुल धर्म दी दुनिया च जुर्म है, पाप है। भावे कानून दी दुनिया जुर्म ना होवे, लेकिन धर्म दी दुनिया विच ए पाप है, इते गुनाह है। इदा पहनना ही दूजियां दी वाशनावां नू भड़का रहा है, ते भड़कियां होईयां वाशनावां किसे वक्त भी किसे दी इज्जत किसे दी असमत लुट सकदियां ने। मौजूदा दौर दा माहौल ऐसा है कि चारों पारे पासे नगनता और अर्ध नगनता दे राही वाशनावां नू प्रदर्शित करन दा एक महान प्रगटावा जो है चल रहा है चारों पासे, और इसे नू देख के ही गुरु नानक दी जो है रसना तो निकल गया सी, इते कल युग दा भाव है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कहे राखे भाव। मन नारद होवे ते चारों पासे नगनता दी प्रदर्शनी होवे, तो फिर जति ते सती लई थां बनानी बहुत औखी है, अपने पैर टिकाने बड़े औखे ने। पहनन दे संबंध च धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए महान उपदेश इस प्रकार है, रत्ता पहनन मन रत्ता सुपे दी सतदान। ए जो मन परमात्मा दे नाम दे च लीन हो गया है, रत्ता गया है, मानो मैं एही लाल रंग दी पोशाक पहनी है, और लाल रंग दे गूढ़े कपड़े पहनन दा हुण चाव नहीं रहा। सुपे दी सतदान, और यही मैं सफेद रंग दे कपड़े पा लए ने जो दानी बिरतियां पैदा हो गई ने परोपकार दा मादा पैदा हो गया है। नीली स्याही करा करनी पैरन पैर ध्यान जो मन विच अपने विकारां दे

ঘোড়ে পাখর সোয়নে সাখতে বুঝন তেরি বাট তরকস তীর কমান সাঙ্গ তেগ বন্দ গুণ ধাত वाजा नेजा पतसों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नू बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ा दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ा दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने और इना कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा ने जितना पसारा वड्डा हो जांदा है और इस नाल मानसिक तनाव वध जांदा है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते ते शायद कोई कोई रोगी होवे पर मानसिक तल ते ते सतगुरु कहिंदे ने जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरदेव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहंदे ने बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निरवैर अकाल मूरत अजोनि सैभं गुरुप्रसाद हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाही अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी ने अमृत वेले दी अपनी एक महानता अपने बोलां विच अपने शब्दां विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर दी सिरजना कीती है इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी फिजां चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देंदा है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां डोल दियां हुई शाखां अपना शिंगार बदल रही ने उदास दिखाई दे रही नगन दिखाई दे रही ने ये शाखा दरख्तां दियां। हो बहु मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसमे बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर शिंगार कीता है। किधरे पीले रंग दा किधरे गुलाबी रंग दा किधरे चिट्टे रंग दा इतने सुंदर शिंगारमई वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जांदा है। ए मौसमे बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पांदा है। गर्मी दी रुत आ गई है। मन दी हालत कुछ और हो गई है। ठंड आ गई है। शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है सानू कपड़े बदलने पैंदे ने मोटे कपड़े गर्म कपड़े लबने पैंदे ने और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़िया नू एक पासे करन ते। हूबहू जो समा है दिन दे चार पैर रात दे चार पैर जिथे रुत दा असर है मौसम दा तन ते मन ते असर है उथे चार पैरां दा जिसनू समा कहंदे ने वक्त कहंदे ने इसका भी मन दे उते तन दे उते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदे सौ गया है तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदे संपूर्ण हो जाती है अखां खुल जांदियां। एक गल वखरी है अगर मनुख समय दे मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ए उठ सके। वक्त सिर सौं गया है नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हां प्रकृति पंछियों नू जगा देंदी है पशुओं नू जगा देंदी है क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदे आ चिड़िया पंछी पशु करीबन करीबन सो जांदे ने। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है चह चहांदे हुए पंछी उठ बैठदे ने गऊआं उठ बैठदियां ने बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु पक जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नू भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखा जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਭਜਨ ਲਈ ਬੜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੋ ਭੋਜਨ ਆਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਨੀਂਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਲਸ ਮੱਧਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ

रक्षा लई सुरक्षा लई प्रथम पिता दी पति दी फिर पुत्र दी ताई जो है ये सुरक्षित रह सकती है अपनी इज्जत आबरू नो बचा के जो है रख सकती है। व्यास जी ते कहा करदे ने उना दे बोल कि स्त्री प्रकृति दी बेटी है इस ते इंसाफ चाहिदा है और प्यार चाहिदा है सत्कार चाहिदा है। सिख साधी साहब कहंदे ने जिस घर दे चों स्त्री दे चीखण चिलाण दी आवाज बाहर आउंदी है उस घर दे चों सुख ते संपदा मान लो बाहर जा रही है। वाकई उस घर दियां खुशियां उस घर दी शांति उस घर दा सुकून बाहर चला जांदा है जिथे स्त्री दा रुदन घर दी चार दीवारी तो बाहर चला जाए। कवि तुलसी ने स्त्री दे कुछ वख वख रूप इस ढंग नाल जो है बयान कीते ने। स्त्री चार रूप अपने जो है रखदी है उन्हों रामायण विच रामचित मानस विच कवि तुलसी इस तरह जो है बयान करते ने। जग प्रतबरता चार विद अही वेद पुराण श्रुति अस कही इस तरह आख है। उत्तम के अस बस मन माही सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री उसकी दृष्टि जगत विच उसके पति तो बिना होर कोई भी पुरुष नहीं है वही पुरुष है बाकी कोई पुरुष नहीं है। इसनु अध्यात्मक रंगन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर दिती है। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जाने धन सती दरगे परवाने। जिसने परमात्मा दी झलक अपने पति दिच देखी महाराज कहने धन है वो सतवंती धन है वो स्त्री। कोशिश ते हो ही सी साडे देश दे कि स्त्री पुरुष नू परमेश्वर आखे परमेश्वर दी झलक वो पुरुष दे चों देखे और पुरुष स्त्री नू देवी आखे वो प्रभु दी शक्ति दी झलक स्त्री दे जो है देखे। अगर इसक नू देवी दिखाई देवे और एक नू परमात्मा दिखाई देवे तो घर मंदिर बन जांदा है घर हरि मंदिर बन जांदा है। पर एक नू भूत दिखाई देवे एक नू डायन दिखाई देवे घर ही नरक बन जांदा है। पता नहीं पृथ्वी ते कितने घर नरक बने हुए ने क्योंकि घरां च कोई डायन रह रही है कोई भूत रह रहा है। एक नू डायन दिखाई दे रही है और एक नू भूत दिखाई दे रहे हैं। जीवन दा ढंग ना आया एक दूजे नू समझण दा ढंग ना आया। कवि तुलसी कहंदे ने जिथे चंगे माड़े पुरुषां दे चौंदे ने उथे चंगे माड़े स्त्रियां दे च भी हुंदे ने। जैसे पृथ्वी ते सिर्फ दिन नहीं रात भी है मनुखी तल ते सिर्फ गुण नहीं औगुण भी ने ओ औगुण पुरुष दे अंदर भी ने ओ औगुण स्त्री दे अंदर भी ने। उत्तम स्त्री दी तस्वीर कशी कर दे हां तुलसी कहंदे ने उत्तम के अस बस मन माही सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। मद्धन पत प्रत पर प्रत देखियत ऐसे भ्राता पिता पुत्र नित जैसे। जो उस तो थले दी है उते इस तरह समझ दिए पर पुरुष नो ये पिता है।

चौथी निशानी उथे केसरी निशान चलदा होवे ते पंजवी निशानी उथे सवेरे शाम नगारा भी वजदा होवे। पंथक मर्यादा मुताबक पंज निशानियां गुरु घर दियां ने। साहब सच्चे पातशाह महाराज अस्थान उन्हां दा एक कहम होया ते भाई गुरदास ने एक बचन कहा, कहिंदे ने कई वारी बंदा गुरु दे नेड़े रह के जे कमाई ना करे ते मत इन्नी कु भ्रिष्ट जांदी है, जेड़े कुकर्मा तो लोकां नूं वरग है कई वारी बंदा ओहो जिहा कुकर्म आप करन लग पैंदा। भाई साहब भाई गुरदास ने एक बचन कहा, कहिंदे ने प्यारिओ जे गुरु दर ते रह के जीवन बंदे दा निखेध हो गया ते जीवन बनावांगे कित्थों। ते एक वारी अर्ज कीती सी एक विद्वान कहिंदा, कहिंदा साडे दो मुंह ने, ओह कहिंदा मस्जिद में भी जाते हैं, कहिंदा मस्जिद में भी जाते हैं, मैं खाने में शराब भी पीते हैं, मस्जिद विच भी जाना है। ते एक ने थोड़ा जा वेरवा पा के शेर किया, ओ कहिंदा मस्जिद में चंदा भी देते हैं, मैं खाने में शराब भी पीते हैं, खुदा भी राजी रहे शैतान भी नाराज ना हो। दोगली जी चाल साहब कहिंदे नहीं, एक दा बन के आई। भाई गुरदास ने बचन क्या कह लगे कि जदों किते अग लग जाए ते बंदा कहिंदा भी अग नूं बुझाणा ते पानी लभो, कहिंदे ने बेड़ी विच अग लगे बाहर किते ते पानी विच बुझा देंगे ले जा के, ते जेड़ी बेड़ी पानी विच चलदी होवे ते पानी विच अग लग जाए ते पानी विच बुझे ना उहनूं किथे जा के बुझांगे। भाई साहब कहिंदे ने बंदा चोरां तों डरदिया किते किले विच जांदा है ते जे किलेदार ही जांदिया सार उहनूं लुट लै ते उह जाएगा किथे। कहन लगे बंदा किसे मनुख तो शरीर नू बचान लई राजे कुल फरियाद करदा है कि मेरा कतल हो जाना है, ते जे राजे ही जाके उहदा सिर ला दे उहने फरियाद किथे करनी। कहिंदे ने मना कि माया दी लेश लाण लई तू गुरु दर ते आउणा है, वकारां दी मैल लाण लई तू बेनतियां करना है, ते जे साई दे दर ते आके वकारी बन गयो ते दुनिया विच केड़ी थां जिथे जाके अंदर नू धोवेंगा। भाई साहब ने बचन कहे ने, कहन लगे बाहर की अगन बूझत जल सरता कह, नाव में जो लागे आग कैसे कह बुझाइए, बाहर ते भाग ओट लीजिए ते कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कट जाइए, चोरन को त्रास पाए शरण गए नरिंद, मारे महीपत जियो कैसे कह बुझाइए, माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जाए ता जो ब्यापे माया कहो कट जाइए। जे उथे भी अंदर केवल बिरती रही केड़ी जगह ते जाएगा, अज आउणा है उस स्थान वाल। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दा समा कोई सुखैण आया, परत के शहादतां दे दौर चले ते इत्थों तक के सिखां नूं गुरु अस्थाना दे दर्शन करन दी भी पाबंदी ला दित्ती गई। नेरे सवेरे आउणा दर्शन करने गुरु अस्थाना ते। समा आया शेरे पंजाब दा, उस वेले उदासी महात्मा जेड़े सन गुरु घरां दा प्रबंध कर लगे। शेरे पंजाब ने बहुत सारियां जगीरां दौलत जमीन जेड़ी है एक गुरु घरां दे नाम लगाई। श्री ननकाणा साहब इत्थे भी महंत सन, अमृतसर साहब दी धरती ते भी पुजारी महंत ने। मुकदी गल की के गुरु घरां दा जेड़ा प्रबंध है जा संचालन है वह महंत दे हाथ विच सी, उहदी मर्जी जिओ जा मर्जी करे। अंग्रेज दा समा आया ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵਕਾਰੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਏ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ते दर्शनी ड्यूड़ी अंदर जांदियां खबे हथ एक बहुत सोहनी सुनहरी अखरां विच घटना लिखी है कि कुदरती कौतक। उहदे विच कहिंदे ने इत्थों तक कि हरिमंदर साहिब दे अंदर जदों पुजारी कुकर्मी सन कि एक वारी अग दा गोला हरिमंदर साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दे बिलकुल सामने आके फटिया, चार चफेरे चानण हो गया, इमारत दा कोई नुकसान नहीं, संगत विचों किसे दा नुकसान नहीं, पर कहिंदे ने एक सज्जन नूं मैं पढ़िया कहिंदे ने कि अंग्रेज जेड़े सन ओह सरबराहां दे राहीं हरिमंदर साहिब नूं भी गहने पवाना चाहुंदे सन कि गहना दे दिओ जिन्नी भेट आएगी तुहाडी। उस दिन जदों इह घटना वापरी खमोश हो के चले गए। पहली घटना
12 अक्टूबर 1920 जलियांवाले बाग वाले पासियों इथे गुरमुखा ने सिंह सभा लहर दे कुछ मोढ़िया ने अमृत प्रचार अमृत संचार कीता ते ओ सज्जन जिन्हों अपने लोग कई बारी चौथा पौड़ा शब्द वरदे ने उन्होंने अमृत की दात लई ते जदो कड़ा प्रसाद की देग लैके हरिमंदर साहब आए ते पुजारिया ने अगो इनकार कर दिता कहन लगे तुहाडी देग हरिमंदर साहब दे अंदर परवान नहीं हो सकती ते उन्हां ने क्या भलियो असी तां गुरु कलगी वाले दे अमृत की दात लईए कहन लगे की होया अमृत लै लिया है पर तुहाडी जात तां ओही है ना अज भी अजी तकने आ पता नहीं ए कोढ़ दी बीमारी कदों अंदरों निकलेगी साहब गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़न वालियो भगत कबीर साहब ने एक गल डंके दी चोट ते कही सी कहन लगे जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाज काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद हम कत लोहू तुम कत दूध ते उथे एक गल स्पष्ट कर दिती के जात दा अभिमान ना करी ब्राह्मण एक जात हो सकदी है पर जिवें गुरमुखां क्या पंडित जात नहीं पंडित जेड़ा ओ अंदर दी पदवी है जिन्हों साहब कहंदे ने सो पंडित जो मन पर बोध है राम नाम आत्म में सोध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित का उपदेश साहब सच्चे पातशाह जी दे उन्हां सिखां कहा कि देख प्रवान करो नहीं मने उथे गुरमुख फिर सरदार तेजा सिंह जी पुत्र सरदार तेजा सिंह जी चूड़कणा पंथक आगू आए उन्हां पुजारियां नूं कहा कि तुसी देख स्वीकार करो पुजारी इनकार कर गए उन्हें क्या देखो गुरु ग्रंथ साहब नूं तुसी भी गुरु मानदे हो ते असी भी मानने हां झगड़ा नहीं गुरु ग्रंथ साहब दे चरणां विच कर लो अरदास ते जो हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहब दे देणगे ना आपां दोवें धिरां स्वीकार कर लांगे जे गुरु नूं प्रवान होया ते देख लै लियो जे ना प्रवान होया ते असीं कदी तुहानूं कहांगे नहीं उथे गुरमुखो भाई गुरबचन सिंह ग्रंथी सन उन्हां ने अरदास कीती भाई साहब होरां नूं पता है उस घर की मर्यादा ही आप जी दे ज्ञात लई कि भाई साहब भाई बख्शीश सिंह जी होरी गुरु रामदास जी दे दर ते मुख ग्रंथी की सेवा भी निभाई है जिथे गुरमुखो किसे नूं हक नहीं कि पंज सिंह साहबान जिहड़े ग्रंथी साहब ने उन्हां तो बिना जां चौर बरदार तो बिना कोई चौर नहीं पकड़ सकता महाराजा पटियाला भुपिंदर सिंह गया सी चौर नूं हत्थ लाने का यत्न किया ते गुरु के ग्रंथी सिंह ने रोक दिता कह लगे होवेगा बादशाह सम्राट राजा अपने कर परे पातशाह दे घर विच तेनू हक नहीं चोर नूं हत्थ ला सके वो सेवा इनी उची सुची उस घर दी गुरु के ग्रंथी ने पुजारी ने की अरदास के धन गुरु रामदास जी की इन्हां दा अज अमृत छकना तेरे घर विच प्रवान है जे प्रवान है ते की असी इन्हां दी दे सवकार करिए तुसी हुक्म दिओ कि ये नीवी जात दे सिखां विच रल सकदे ने ते जदों अरदास करके हुक्मनामा लिया गुरु के वजीर ने ते साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विचों वचन आया सोरत महला तीजा निगुणिया नूं आपे बख्श लै भाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है भाई राम नाम चित लाए कहन लगे प्यारिया के देखो उस मालिक ने कृपा की थी हर जियो आपे बख्श मिलाए ते अगला बचन सी गुणहीन हम अपराधी पूरे सतगुर लिए रलाए के पूरे गुरु ने मना लिया उथे पहली बार हरिमंदर साहब जकारा छड़िया गया सी चेते रखियो कहने के उदो देख प्रवान हो गई ते उसे वक्त पुजारी हरिमंदर साहब छड़ के चले गए ते प्यारियो 12 अक्टूबर 1920 श्री अकाल तख्त तो पुजारी छड़ के चले गए ते पंथ ने पहला जथेदार महंता तो बाद भाई साहब भाई सरदार तेजा सिंह पुचर नूं थापिया जदो इधर एक घटना वापरी प्यारियो उथे फिर जेड़े बाहर रहिंदे महंत सन उन्हां ने मन मर्जियां कीतियां सिंह सभा लहर गुरु घर आजाद करन दी लहर चली गुरुद्वारा मूवमेंट पहली घटना श्री तरन तारण साहब दी जिथो आरंभता सारी इस साके दी हुंदी प्यारियो इथों दे महंत इन्ने कु विशई ते निशई सन जेड़ियां गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब विच साहिब ने वर्जियां ने ना आ जदों रहत मर्यादा दी गल असीं करने आ कई वारी कई कहिंदे ने सी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मानने आ अमृत ए मर्यादा जरूरी है ओ भाई सिखो जेड़ी मर्यादा असीं पढ़ने आ इहदा आधार इहदा बेस गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है कदी पढ़ियो कि नशे नूं तो वर्जिया नहीं गुरु ग्रंथ साहिब ने
ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ, ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਦੋ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਦੌਲਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਇਸਤਰੀ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਰ ਹਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਮਹੰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਉੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਰੇ ਕਰਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾਚ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋੜੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਘਟਨਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਤ ਲੁੱਟੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਕੋ ਖਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਪੈ ਗਏ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ, ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਟਕਵਿਆਂ ਨੇਜਿਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗਏ, ਮਹੰਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਖੰਡੀ ਦੰਭੀ ਕਪਟੀ ਆਗੂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵੀ ਸੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਗੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਦੀਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ ਵਸਾਊ ਵਾਲੇ, ਦੋਨੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਖਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਵਸਾਊ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਗਈ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਖਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਉ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਸੋਚਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਹੈ

जुगत दे जरिए इन्हां नूं जवाब दिता। जुगत दे जरिए भगत फरीद साहब ने ना एक कच्चा नारियल लिया ते कच्चा नारियल उस सेवादार दे हवाले कीता। आखिया सजना ए नारियल है ते नारियल दे अंदरों गिरी बचा के लियाउणी है ते इहदा खोल सारा ला के लियाउणा है, पर ख्याल करी गिरी टुटे ना, जिहड़ा अंदर दा कच्चा खोपा है ओ ना टुटे ते नारियल कच्चा है। आप जानते हो जद कच्चे नारियल नूं तोड़ोगे ते अंदर गिरी ते टुटेगी, लाजमी टुटेगी, बाहरों चोट करोगे चोट गिरी तक पहुंचेगी। इस सेवादार नारियल दे खोपे नूं बचाउण दा यतन करदा है, गिरी सालम बजे पर बचदी नहीं है, चकना चूर हो गई, कई टुकड़िया दे अंदर वह खोपा होया ते टुटा होया खोपा लेके टुटा होया नारियल लेके सेवादार आ जांदा है भगत फरीद साहब जी दे कोल। भगत जी मैं तुहाडे ते कीता सी एक प्रश्न कि ए महान चंगे महान गुरमुख संत पुरुष शहादत दा जाम पींदे रहे पर इन्हां नूं दुख नहीं होया, तुसी मेरे सवाल दा जवाब नहीं दिता, अगों फड़ के मेरे हथ विच नारियल ते नारियल तोड़ के मैं लाया आ, जिस तरह तुसी कहा सी उस तरह मैनू गिरी नूं बचा नहीं पाया। भगत जी ने हुण पक्का नारियल फड़िया है ते पक्का नारियल पकड़ के उहदे हवाले कीता। कहन लगे सजना चलो ओ नहीं बचिया ते इहनू लै के जा, इहनू वेखी इहदा खोल वखरा ते गिरी वखरी करके लियाउणी, गिरी टुटे ना। इहदा खोल जद तोड़िया ते बड़े आराम दे नाल टुट गया ते खोपा अंदरों साबत बच गया। साबत खोपा लैके भगत जी दे कोल आया। भगत जी मेरे सवाल दा जवाब, कहन लगे एही जवाब है, जिन्हां दा मन तन दे नाल जुड़िया हुंदा है ते जद तन नूं चोट हुंदी है उन्हां दा मन वी अंदरों टुटदा है, मन वी दुखी हुंदा है, ते जिन्हां दा मन तन नालों हट के ते खुदा बंद परमात्मा दे चरणां दे नाल जुड़िया हुंदा है उन्हां दे तन नूं बाहरों कट्टो तां परवाह नहीं, तन नूं तोड़ो तां परवाह नहीं, तन नूं साड़ो तां परवाह नहीं, तन नूं चरखड़ी ते चाड़ो, तन नूं आरे दे नाल कट्टो, तन नूं देग विच उबालो, तन दे नाल जो मर्जी करो, उन्हां नूं अंदर दुख नहीं पहुंचदा, क्योंकि जिन्हों दुख पहुंचना है वह तन दे नाल है ही नहीं है, तन नूं पहलां तों कट चुका है। किसी ने कहा सी कि जिन्हों तू कटना चाहना है उन्हों मैं बड़ा समा पहलां तों कट चुका और उन्हों कट के शरीर नालों जोड़ चुका परमात्मा दे नाल। साहबजादे कहिंदे ने माता जी तन चिंता कछु नाहे हमारी, पाछे तब चिंता उर पारी। चिंता इस गल दी साडे जान तो बाद जालम तुहाडे शरीर दे नाल की करनगे। इम कह लाल उठे ते सबेरे, इस तरह दोवें बच्चे उठदे ने और उठ के फिरे मात के चार छुफेरे, जिवें एक साधक अपने मुरछद दे चार छुफेरे परिक्रमा करदा है, इन्हां दोवां छोटे बच्चियां ने माता गुजरी जी दीआं परिक्रमा कीतीआं ने। इतिहास दे पन्ने पढ़िए, पढ़ के खबर मिलदी है। इम कह लाल उठे ते सबेरे, फिरे मात के चार छुफेरे, माता जी दे चार छुफेरे कुम्मे ने परिक्रमा कीती है, नमस्कार कीती। माता गुजरी जी इन्हां नूं कुट के गलवकड़ी दा प्यार देंदे ने, निग देंदे ने, इन्हां दा मुंह मत्था चुमदे ने। अल्लाह यार खां जोगी साहब लिखदे ने माता गुजरी जी ने ना कलेजे दे नाल ला के उस तों बाद एक गल कही, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लू, आओ एक वारा मैं तुहानू होर घुट के गलवकड़ी दा निग दे दिया, आओ एक वारी मैं घुट के अपने सीने दे नाल तुहानू ला लवा, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लू, केसों में कंगी मुंह धुला तो लू, प्यारे सरों पे नन्नी सी कलगी सजा तो लू, मरने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लू। आख्या अज जा रहे हो ते बेटा मैनू लगदा है करतार दा अज भाणा वरत जाना है, अज शामा दे वकत तुसी मुड़ के मेरे कोल नहीं आओगे, ते जे जा ही रहे हो लाड़ी मौत नू व्याहुण वास्ते ते आओ अज मैं तुहानू सजा के शिंगार के दुल्हा बना के अपने कोलों तोरा, तुसी चाई चाई जाना है और तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे दादा जी दे चरणां दा ध्यान धर के जाना है। साहिबजादियां नूं छपाई लैण वास्ते आउंदा है। छपाई नूं माता जी ने एक गल कही, कहन लगे तेरे घर छोटे छोटे न्याणे बच्चे नहीं है, तू लैण वास्ते आया है, जुल्म कमाउण वास्ते आया है।

हर कोई नहीं, हुण अपने सज्जन भी प्रमाण ये दे देंदे ने। शब्द आरंभ हुंदा नामा माया मोहया, कबीर साहब दे श्लोक ने, नाम देव तैनू ता माया ने ठग लिया, कह तलोचन मीत काहे छीपो छैले राम ना लावो चीत, तेरा चित राम विच नहीं जुड़िया, सारा दिन कपड़े रंगण ते रहने। ते अगो उन्हें उत्तर बड़ा सोहना दिता, कह लगा नहीं होए नामा कह तरलोचना, मुख ते राम संभाल ओ तरलोचन, तू अपने मुख तो जी राम राम जपया कर, हाथ पाओ कर काम सब, मैं हथा पैरां नाल कम करना वा, पर कीत नवंजन नाल मेरा जिहड़ा चित है ना ओ कभी वाहगुरु तो एक खिन भी दूर नहीं गया। उन्हें सवाल कर दिता ए किवें हो सकदा है, अपने सज्जन भी ये कह देंदे ने ना कि हाथ पाओ कर काम सब, कीत नरंजन नाल असी ता चलदियां फिरदियां नाम जप लैने आ, पर मैं अर्ज करा प्यारियो एक अवस्था है, कभी तको खां अपने अंदर नूं टिकाणा किन्ना कु मुश्किल है। आम तौर ते जदो नाम दी गल चले किन्नी एकाग्रता चाहीदी है, जिदन फौज विच कोई मनुख भर्ती हुंदा है ना ते उहनूं गोली चलाण दी जाज दसदे ने, ते जदो ओ गोली चलाण दी जाज सिखदा है ते उहनूं इक गल कहिंदे ने कि अपने एक नेत्र नूं बंद कर ले, पर जदो तू गोली चलाण लगना है उदो कोशिश करी कि अपने साह नूं रोक ले, ते जो कह भी क्यों शरीर मेरा ता सारा पे है, अपने साह नूं क्यों रोकां, ओ किन्ने हो सकदा है कि तेरे थोड़े जे साह लैण दे नाल ए बंदूक जेड़ी तेरी छाती नाल लगी है किते ए हवा दे इक इशारे नाल थोड़ी जी हिल गई ते निशाना टिकाने ते लगना नहीं। एक फौजी निशाना सिखण लग्या ओनू इन्नी एकाग्रता चाहीदी है। आ माइया सूई विच धागा पांदियां ने ते चेते रखो हर कोई पांदा जदो धागा धागा पाण लग्या अपने साह नूं भी रोक लईदा है कि कई वारी साह दे नाल भी उंगल थोड़ी जी हिल जाए ते उस सुराख दे अंदर धागा पैंदा नहीं। इहदा मतलब इन्नी एकाग्रता इन्हां कम्मां लई चाहीदी है, ते जिहदे बारे साहिब कहिंदे ने कि मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए, ओहदे लई किन्नी कोई एकाग्रता चाहिए। पहला एकाग्रता नाल टिकना पएगा। एक दिन मैं अर्ज कीती सी पढ़ाई आरंभ विच करिए ते तरीके होर ने, ते जिदन बंदा पुग जांदा है उदन ओहदे पढ़न दा ते कहण दा तरीका कुछ होर हो जांदा है। भगत साहिब नूं पुछिया ए किवें हो सकदा है कि बाहरों तू गल्लां नहीं करें, हाथ पाओ कर काब सब कीत नरंजन नाल, जे बाहरों भुल चुक बोलदे ती खरे हर भाणे, ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच रामकली राग है ते जोगियां दा बड़ा प्यारा राग है रामकली, यही कारण सिद्ध गोष्ट भी रामकली राग विच है। साहिब ने भगत नामदेव ने एक शब्द विच पंज उदाहरणा दित्तियां, कहन लगे ए हो सकदा है संभव है, असंभव नहीं, ए हो सकदा है कि बंदा किरतकार करदिया होया भी मालक नाल जुड़िया रहे, ते जिहड़ा बंदा जुड़िया नहीं ओ उदाहरण तो बिना समझदा नहीं, ओ कहिंदा कोई प्रमाण दे, ते भगत ने पंज प्रमाण दिते। कहन लगे सुन ओ तरलोचन, छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ांदे ने ते एक बच्चे दे हाथ विच डोर है, नाल दे साथी भी मकान दी छत ते ने, ओ गल्लां भी करदा है, ते जे पुछ लिए बेटा पतंग भी उड़ाना पे है, छोटे छोटे बच्चियां नाल साथियां नाल गल्लां भी करना है, पर तेरा ध्यान किधर है? ते अगो ओ बच्चा कहेगा बाबा मैं भावे अपने साथियां नाल गल्लां करना पर मेरा अंदर वाला चित जिहड़ा ओ पतंग दी डोर दे विच ही। कहिंदे जे एक बच्चा गल्लां करदियां भी डोर नाल जुड़िया है ते की भगती करन वाला काम कार करदियां अंदरों जुड़ नहीं सकदा? उन्हां दूजा प्रमाण दिता, कहन लगे पुरातन समय बीबियां भैणां खूह तो पानी भर के लियांदियां ने, सिर ते गागर है पर जदों रस्ते विच आउंदियां ने हसदियां ने गल्लां करदियां ने, जे पुछिए भैणां कि सिर ते धड़ा चुकिया है ते आपस विच गल्लां करदियां जे तुहाडा ख्याल किधर है? अगो कहणगियां वीरना भावे असी आपस विच गल्लां करदियां हसदियां वा पर असलियत यही साडा अंदर वाला चित जिहड़ा है ओ सिर ते चुके होए घड़े दे विच जुड़िया होया। तीजा प्रमाण दिता, कहन लगे तू सोने दा काम करन वाले कुल जा, ओ सोने नूं घरदा पिया पर गाहकां नाल भी गल्लां करदा है, जे पुछिए प्यारिया ए किवें? गल्लां भी करना है ते तू सोना भी करना है, तेरा

आम तौर ते शीतला माता कहिंदे ने उस बीमारी नूं, पर गुरु हरगोबिंद साहिब फिर नवा नरोए उस अकाल पुरख की कृपा नाल चेचका चेचक की बीमारी भी खेड़ा छड़ गई। धन गुरु हरगोबिंद साहिब थोड़े जे होर वड्डे होए ते इन्हां दी पढ़ाई का प्रबंध किया गया। सिख विद्वान ये मानते ने कि पढ़ाई वास्ते गुरु अर्जन देव जी ने बाबा महादेव जी तो पुछया सी। मैं कोशिश करना संखेप विच गुरुदेव दे जीवन नूं बयान कर जावां। वैसे ओदा जीवन बेअंत है। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब की पढ़ाई का प्रबंध कर ली बाबा महादेव जी तो पुछया ते उन्होंने इको गल कही सी, गुरु अर्जन देव नूं भरावा बाबे बुढ़े नालों वध लियाकत किस दे कोल है, उहदे नालों सियाणा सूझवान किहड़ा है। ते जदों बीड़ साहिब तो बाबा बुढ़ा जी नूं बुलाया सी ते बाबे बुढ़े ने इको ही शब्द कहा कि सतगुरु मैं तेरे पुत्र नूं पढ़ा सकना, मैं तां तेरियां मझां दा छेड़ूआं मझां नूं चार सकना, तेरे खेतां विच हल वाह सकना वा, दातरी पकड़ के तेरे घर दे पशुआं लई मैं चारा पठे वढ़ सकना वा, किसे विद्वान दी नियुक्ति कर जेड़ा तेरे बच्चे नूं पढ़ाए, कोई आलम लभ लवो। ते गुरु अर्जन देव ने इको शब्द कहा सी, बाबा बुढ़ा मैनू नहीं पता तू खेतां विच वाही करना, तू गुरु घर दे पशु सांभना, तू गुरु दर ते बैठ के केवल हत्थी सेवा करना, मेरे पुत्र नू केवल ओ विद्या पढ़ा दे जेड़े तेरे गुणा नू देख के गुरु नानक ने तैनू अपनी गलवकड़ी विच लै लिया है, बस मेरे पुत्र नू ओ चीज पढ़ा दे जिवें गुरु नानक तेरे ते त्रुट पिया, मेरे पुत्र उत्ते भी उस प्यारे दी कृपा हो जाए। बाबा बुढ़ा जी ने विद्या आरंभ कराई। सिख विद्वान ये भी मानते ने कि घोड़ असवारी शस्त्र विद्या ये भी बाबा बुढ़ा जी ने हरगोबिंद साहिब सच्चे पिता महाराज जी नूं सिखाई। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जदों लाहौर गए ने तवारीख दे मुताबक गुरु हरगोबिंद साहिब नूं गुरियाई दे के गए ने। साहिब नूं पता है कि लाहौर जाना है, उत्थे तुरकां ने खुजत करनी है ते साडा चीज साडा ठीकरा गुरुदेव कहिंदे उत्थे जरूर लगेगा। धन गुरु अर्जन देव जी की शहादत हो गई है ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी गुरगद्दी ते विराजमान होए ने। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज इन्हां दे कोल जिहड़े दो सिख ने भारी जीवन वाले, उन्हां विचों एक बाबा बुढ़ा ते दूजा भाई गुरदास है। बाबा बुढ़ा आदि सिख है जिन्हें गुरु नानक साहिब तो कृपा लई भाई गुरदास गुरु अमरदास जी दे वेले तो सिखी कमा रहे हैं। उस तो इलावा भाई बिधी चंद, भाई जेठा, भाई पुराणा, भाई लंगा, भाई पिरागा ये मुख सिखी सिख ने जेड़े गुरु हरगोबिंद साहिब की चरण शरण विच रहिंदे ने। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपने पिता जी की शहादत तो बाद सानू एक नवी सेध दिती है। वैसे बाणी दे आधार ते मैं अर्ज करांगा, गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं बाबा बुढ़ा जी ने गुरियाई दा तिलक भी पाया, तिलक भी लाया, ते बाबा बुढ़ा जी ने दो कृपाना गुरु हरगोबिंद साहिब नूं पहनाईयां ने। ते साहिब ने पहले दिन यही सारी सिख संगत नूं संबोधन कीता सी कि अज तो बाद रुपये नहीं, केवल बस्तर नहीं, जे तुसी गुरु नानक दी कृपा लैणी है, सोहणियां जवानियां, सोहणियां घोड़े, सोहणे शस्त्र भेट करो। ते बाबे बुढ़े ने दो कृपाना पाईयां मेरे गुरु हरगोबिंद साहिब नूं। ते सिख विद्वाना ने इहदी व्याख्या बड़ी प्यारी कीती, पढ़दे असीं सारे हां। ते नफे ने ते अब्दुल्ले ने तां वार भी गाई। ते मैं इक दिन अर्ज कर रहा सां, जदों गुरु हरगोबिंद साहिब नूं दो कृपाना पाईयां ने ते उस वक्त नथमल ते अब्दुल्ले ने जेड़ी वार गाई उहदे विच गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं कृपाना पानी कोई आम घटना नहीं, इहदी विच इतिहास विच बड़ी वड्डी इह घटना है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ने आ, भट्टा ने गुरदेव नूं किते जनक नाल तुलना दे दित्ती समझाण दे लई, किते कृष्ण जी लई शब्द वरते, राम जी दे शब्द वरते, उहनां ने किते ऋषि महात्मावां दे शब्द वरते, पर नथा मल ते अब्दुल ने जिदन गुरु हरगोबिंद साहिब ने दो कृपाना पाईयां ने, किसे राजपूत राजे नाल नहीं, जनक नाल नहीं, कृष्ण जी नाल नहीं, राम जी नाल

जो लड़ दीन के खेत पुर्जा पुर्जा कट मर कबू ना छाड़े खेत मरता मरता जग मुआ कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी ना जानिया कोए ऐसी मरनी जो मर बहुर ना मरना हो ऐसी मरनी जो मर बहुर ना मरना हो बेशुमार अथाह अगंत अतुल जो बुलावो त्यों नानक दास बोले।

पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों वडभागी हो रात्रि दे इस दीवान विच आप जी ने हाजरी भरी है। सतगुरु जी दे पवित्र घर की मर्यादा मुताबिक सोदर रह राज साहब जी दे पाठ होए ने, उस तो उपरांत गुरु प्यारियां ने आप जी नू इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण कराया है, जिथे अगे आपां नेम नाल पिछले कुछ दिनों तो जगत गुरु बाबा सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गुरबाणी श्री जपजी साहिब जी की विचार करते आ रहे हां। उथे अज विशेष तौर पर जिमें कल भी अर्ज की थी, सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी पुरब जो पिछले दिनी बतीत हुए है, ते जिसनू कल इथे दीवान विच गुरु तेग बहादुर जी का शहादत का दिन मनाउंदिया होया कल दे दीवान साहिबां दे चरणां नू समर्पित सन, ते गुरु कृपा नाल आपां ने विचार कीती सी गुरु तेग बहादुर जी दे पावन पवित्र जीवन दी। आओ उस नौवें गुरु नानक जिन्हां ने मजलूमां दी खातर लोड़वंद ते दुखियां दी खातर खास करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बाणी मुताबक तिलक ते जन्यू दी खातर जिस सतगुरु ने बंदगी करने वाले कई महापुरुषां दी खातर जिस गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने धर्म हित साका कीता दुनिया दी पदवी लई दुनिया दी दौलत लई संसार दी शोहरत लई तां अनेकां लोग लड़ के मरदे तके ने, पर धर्म दे हित साका केवल गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कीता। आओ गुरु प्यारो सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी का जीवन जो आपां ने कल विचारिया सी मैं फिर थोड़ा जिहा संखेप विच अर्ज कर दें, उस लड़ी नू आपां अगे तोर लईए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आगमन गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब विखे होए है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आनंद कारज शादी या विह शब्द असी वरतने हैं कई वारी, आनंद कारज करतारपुर की धरती से सत्कार योग जिन्हां नू आपां माता गुजरी जी कहने हैं उन्हां दे नाल सन 1632 नू होए है। गुरु तेग बहादुर महाराज कीरतपुर साहिब की धरती से पिता गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद एक रुमाल कटार ते पोथी लैके अपने नानके पिंड बकाले पहुंच गए। माता नानकी इन्हां दे सत्कारयोग माता नाल ने महल माता गुजरी जी नाल ने गुरु तेग बहादुर जी नवेरा समा इस बाबा बकाला जिसनू आपां अज कहने आ नगर नू इत्थे बैठ के उस प्यारे परमेश्वर दी इबादत बंदगी कीती है। गुरु तेग बहादुर जी नू इत्थे गुरगद्दी सतगुरु जी नू गुरगद्दी दा तिलक जिहड़ा है ओ बाबा बुढ़ा जी दी अंश विचों भाई गुरदत्ता जी ने दिता है। गुरु तेग बहादुर जी बाबा बकाला तो अमृतसर गए ने जिथे मसंदा ने दरवाजे बंद कर दिते, पर सतगुरु सरोवर विच इशनान करके किनारे ते बैठ के वापस पिंड बल्ले नू चले गए। सतगुरु ने परत के उस गुरु नानक